0: आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्यमा पाइन्छ।
1: सम्पर्क दुर्गा इम्पेक्स, शुक्लागण्डकी चार, दुलेगौड़ा भीमसेन टोल, प्रोपाइटर टीकाराम श्रेष्ठ, कान्छा। मोबाइल 9846067645।
2: दुर्गा कपड़ा पसल अब आफ्नै भवनमा पनि, व्हाइट हाउस पार्टी प्यालेसको गेट नजिकै।